होगा जी हो गई निर्माण सुधरमान स्नेहुलक लिहोनाल रेशके वाली सही ले ले मिर्चो ले कुम्प्लेनेरोस अरे ना रागोस ले ना चाक चिका लिकाश ले निर्माणो इफ्राइन चुप चका दियोस यो सब तसीन का केरमानो कुल चिनुम तहना सही ले लाच ओल चिरू लिकुतान का इन होगा ना कि लाइश लिचो के शिश मातन इनकी ले चाप चिरू लिकुतान का इन जुएवेस 2 दे जुलियो अरे ना रागोस ले ना Eres dialo chicali acach, dialo chicali cashland, yo soy de sin querer hermanos o hermanas. Eres la queretana, hermano Efraín, chum cheruli cutan caín, yo chismatan inquilis chap. Colombachinum tejina seila le chol hermano.